0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musa, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

इतना शिंगार करके आई है। इतिहास दसदा है बाई गोलियां ने ओदा लहंगा चुकिया सी संगत जी, बाई गोलियां ने। संगत विच दी लंघदी लंघदी पातशाह दे हजूर आके बैठ गई। महाराज जिया ने पवित्र नेत्र खोले ने, जानदे सन के विषय बकारा दी भरी हुई बैठी है। महाराज जिया ने बोल आखे, ऐसा साच शिंगार कर पुत्री पाए खुदाए। ऐ नूर जहां, सानू पाउण लई आई सी न, जिन्ना शिंगार तू तनते करके आई है, किधरे वाहेगुरु दे नाम दा शिंगार मनते कीता हुंदा, अज सानू तू पा लैणा सी। हैरान हो गई, चरण पकड़ लाए, मानो हंजुआ नाल पातशाह दे चरणा नू धो दिता। ऐ सिखा दे गुरुआ, मैनू दिल्ली तख्त दे राजे ने वेख्या, लुभाए माण हो गया, तेरे अंदर ऐसा की है? पातशाह दे बोल सन, नूर जहां, सानू एक पल लई भी मौत नहीं विसरदी, ते जिन्ना नू मौत नहीं विसरदी ओ कदे रब नू नहीं भुलदे। जिन्ना नू रब याद रहिंदा है, ए फिर काम क्रोध लोभ मोह हंकार वर्गे जेड़े विषय वकार ने उन्हां उपर जोर नहीं चलाउंदे। संगत जी, भाई मौत विसरी है तां ही रब चेते नहीं, रब चेते नहीं तां ही विषय वकारां दे भरे होए हां। पर ऐसे पातशाह महाराज जी इस प्रकार उपदेश दे करके सोझी भी बख्श दे, बड़ जोधा बहु पर उपकारी। फिर जदो पर उपकार करन ते आउंदे ने संगत जी, फिर खुले वरतारे वरताउंदे ने। माता सुलखणी वर्गियां नूं एक एक पुत्र दी भाल सी, ते महाराज सत सत दे के तोरदे ने। इतिहास दे अंदर माई भिखां दा भी जिक्र आउंदा है। घर विच अत दी गरीबी सी, अखां दी जोर जोत जा रही सी, पुत्र व्याहुण वाला सी, घर संगत जी एदां टुटिया फुटिया पुराना सी, कोई रिश्ता लैके नहीं आउंदा सी। सियाणियां माइयां पातशाह दे हजूर लैके आईयां, सारी संगत गुरु हरगोबिंद पातशाह वल वेखदी है। महाराज मेहर दी निगाह पा करके माई भिखां वल वेखदे ने। जिस वेले संगत जी सारिया ने सुखां दा शुकराना दुखां दी अरदास कर लई है, महाराज जिया दे बोल सन, माई तू बैठी है, कुछ मंगना नहीं? हाथ जोड़े महाराज, कुछ मंगना ही नहीं आउंदा। मंगना आउंदा हुंदा ते हुण नूं कुछ ना कुछ प्राप्त हो जांदा। पातशाह दे बोल सन, माई फिर जिवें मंगना आउंदा उवें मंग लै। अज असीं तुठे हां, तेरियां झोलियां भर के तोरांगे। हथ जोड़ के माई ने बेनती कीती, जे तुठे ओ मेरे साई, ए बर मंगदी भिखा। केड़ा बर मंगदी है? सोने दी मधाणी होवे नू दुध रिड़कदी वेखा, कोठे ते चुबारा होवे विच पोता खेड़दा वेखा। जे तुठे ओ मेरे साई, ए वर मंगदी भिखा। जे तुठ गए हो ना, फिर महाराज घर दी गरीबी नू घरों बाहर कढ देवो पातशाह। सोने दियां मधाणियां होवन, घर विच लवेरियां होवन नू दुध नू रिड़के, ते मैं अपनी अखां दे नाल वेखा। हुण अखां दी रोशनी भी बख्शिश कर देवो, कोठे ते चुबारा होवे विच पोता खेड़दा वेखा। तुसी ते सत सत बख्शन वाले हो, एक पोते दी दात भी बख्शियो। जे तुठे हो मेरे साई, ए वर मंगदी भिखा। मीरी पीरी दे मालक कृपालु दयालु सतगुरु जी, जिन्हां दा संगत जी एक तरीक नू नगर कीर्तन है और दो तरीक नू अमृत संचार होना है, ऐसे गुरां तो बार ने बलिहार ने जाइए। गुरु का अमृत लै करके गुरु वाले बनीए, जीवन बतीत करिए। दुरमत दा नाश होवे, गुरमत दा प्रकाश होवे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, दित्ते समय दी समाप्ति।

रहो रहो दोहाहे शुद्ध उच्चारण करने पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग इथे विश्राम जपेहो जपेहो उच्चारण करना जपेहो नहीं कहना जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया जपेहो जाप बोल के ते हाहे दी औंकड़ लाउणी विच ऐड़ा नहीं लगन देना आम संगत जदों असीं नहीं ध्यान देंदे संथ्या कीती होण दे बावजूद भी असीं जपेहो पढ़दे हां ऐड़ा नहीं है विच जपेहो सारिग पाणी सारिग पाणी पाणी बोलना सारिंग टिप्पी ला के उच्चारण नहीं करना जपे

0: आओ। सिव सकत आप उपाय कै करता आपे हुकुम वरताए।
1: हां जी, ए भी करता पाठ ते विश्राम लाउणा, सख्त पाठ ते जमक जरूर लाउणी। सिव सकत आप उपाय कै करता, इथे विश्राम ध्यान सहित साध संगत जी इस पंक्ति दा विश्राम जमक ते ठमक तिन्ने चीजां हन। सिव सकत आप उपाय कै करता आपे हुकम वरताए।
0: हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए, तोड़े बंधन होवै मुक्त।

0: हुकुम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी।
1: तत्तै पहले तत्ते दे उते अधिकता प्रभाव दे के सिमरत पोला पाठ करना। कई थावां ते इस सिमरत पाठ जिहड़ा है तीन तो चार प्रकार दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी विच आउंदे हन। जदों टिप्पी दे नाल आवे उदों सिमरत, सो इत्थे टिप्पी नहीं है ते ध्यान दे सहत सिमरत। चरणा दे रारे दे उपर मम्मे दी सिहारी जाके बोलेगी, अद्धे रारे दी आवाज ही उचारण करनी। सिमरत पूरा रारा नहीं लगता।

आप जी दी अते गुरु के सिखां दी सेवा करना चाहुंदा हां। बड़ी भावना दे सहत जदों बेनती कीती तां सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने बाबा मोहरी जी दी बेनती सुन के उन्हां दे ग्रह विखे चरण पाए अते रात दे समय उत्थे ही ठहरे। बाबा मोहन जी ने बड़े प्यार दे सहत लंगर प्रशादा तैयार करवाया अते फिर छकाया। इसे ही तरह बाबा मोहरी जी फिर मोहरी जी दे

अमर पाठ अमर ही करना अमर नहीं करना ते अटल पाठ अटल नहीं करना टहके ते अर्ग दा प्रभाव दे के अटल करना जग अमर अटल अतोल ठा

तल किरिया दीवा इथे विश्राम साधु संगत जी याद रखना फुल हर सर पावे फुल ते थोड़ा जा जोर दे के उचारण करना ते ठमक भी लाउणी फुल

ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था नूं पहुंचे होए सन। इस करके पंजवें पातशाह जी ने सत्कार किया। पिछे इतिहास दे विच आप सरवण कर आए हो कि जदों बाबा मोहन जी ने शब्दोचारण किया सी धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी दे पासों आग्या लैके, उस समय सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी ने आकाशवाणी दे विच इह वचन कहे सन कि मोहन तुसी पहला सतगुरु श्री गुरु रामदास जी नूं नमस्कार नहीं कीती, इस करके सतगुरु श्री गुरु रामदास जी दे सपुत्र सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी आए हन, भावें रिश्तेदारी दे विच तुहाडे तों इह छोटे ने, पर इन्हां दे चरणी ढह के मुआफ़ी मंगो तां गुरु घर दे विच तुसीं प्रवान होवोगे। इसे ही तरां सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी दे सपुत्र बाबा दातू जी ओ गुरु घर दे सनमुख नहीं सन होए ते सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी नूं लत मार दित्ती सी गुरु के सिखो। उस समय तो ही उन्हां दी लत दे विच बहुत ज़्यादा दर्द रहिंदा सी, भावें बाद दे विच उन्हां ने सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी दे पासों मुआफ़ी भी मंगी, पर सतगुरु जी ने यह वचन कहे सन कि बाणी के बोहित धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जदों इत्थे चरण पाउणगे ना उन्हां दी चरण सरण दे विच ढह के जदों मुआफ़ी मंगोगे तां तुहाडी लत दा दर्द दूर होवेगा। जिहड़ी पीड़ा हुंदी है लत दे विच इह तुहाडी भुल उस समय सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी बख्शणगे। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने पहला तां बाबा मोहन जी नूं बख्शिया। बाबा मोहन जी दे प्रथाए सतगुरु जी ने शब्द भी उचारण किया है, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा, इस प्रकार दे बचन उत्थे कीते। जदों वड्डे सतगुरां दी बाणी पोथियां लैण वास्ते गए सतगुरु श्री गुरु अर्जन

संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देहो सज्जन असी सड़िया जो होवे साहिब स्यों मेल। घर घर एहो पाहुचा सदड़े।

कीमती है, कुछ फूल बड़े कीमती ने, केसर बड़ा कीमती है, ऐते वनस्पति। कुछ पशु भी बड़े महान ने, गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, हंस है। इस वास्ते कोई बड़ा पवित्र होवे ते कह देने ऐते हंस वर्ग है, कोई बड़ा शरीफ ते भले मानस होवे से कहने निरी गऊ है, निरी गऊ है। बड़ा बहादुर होवे ते सी कह देना निरा शेर है, ते शेर देना है, शेर। जिंदगी विच कोई कीमत उसने प्राप्त कर ली है, कोई रब्बी रस मिल गया कहने ते हीरे वर्ग है, निरा हीरा। तस्बीहां ते देंदे पत्थर चमक जाए ते मनुख दे अंदर चमक ना पैदा होवे तो फिर पत्थर मनुख नाल अगे। वनस्पति दे च महक आ जाए ते कोमलता आ जाए ते मनुख दे च कोमलता ना आवे ते महक ना आवे तो ये वनस्पति नालों पछड़े होया। पशुआं दे च दलेरी भी आ जाए, शराफत भी आ जाए, भले मानसी भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए ते मनुख दे च ना आवे तो इहदे नालों पशु चंगे ने। कुछ पशु चंगे ने, ये भी महर्ज कर दें। मनुख हो के चमक नहीं आई, पत्थर चमक गए, पत्थर चमक पैदा हो गई। मनुख हो के हृदय चानना नहीं आया, पत्थर चमक गए ने, हीरे चमक जाते ने। कोहो नूर हीरा जिहड़ा इंग्लैंड दे पिया उहदे ते रोशनी ऐ ते हीरा। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मन जिस दिन पूरा जाग जाए तो हीरे की ने ते गऊ की है, चंदन की है, मनुख दा मन परमात्मा हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। बिगड़ो कबीरा राम दुआई, साच भयो अन कदे न जाए, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यो पानी संग पानी। हुण मैं अर्ज करा, जितना मन किसे दा जागया है इंसानियत उस दे च उतनी है, उस तो ज्यादा नहीं है। जिड़ा अचेत भाग मन दा है वो पशु होवेगा, वनस्पति होवेगा, पत्थर होवेगा। बड़ा कठोर व्यवहार है, बड़े सख्त बोलने, दिल बड़ा पत्थर है। अजे पत्थरां दे संस्कार बड़े प्रबल ने, थोड़ा जिहा जागा बाकी सुत्ता पिया है, जिवें पत्थर सुत्ता होया है। पत्थर पूरन सुत्ता होया है, परमात्मा पूरा जागया होया है। सुते दी यात्रा है जागे, प्रकृति पत्थर नू थोड़ा जगांदी है वनस्पति दे रूप च, होर थोड़ा जगांदी है पशु पक्षियां दे रूप च, ते प्रकृति जगांदी है पशु पक्षियां नू मनुख दे रूप च, ते मनुख नू खुला छोड़ देता है हुण तू आप जाग। मेहनत कर, यतन कर, क्यों हर चे सूद बरायद देर ना पाए। जिहड़ी चीज छेती मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। प्रभु दा नियम ये मेहनत करे, जिन्ने नाम दे आया गए मुशक्कत घाल, गालना गाले, गालना घाल गाल के कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो गए। कारण मैं फिर अर्ज करा, जिहड़ी चीज मुफत दे च मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता होती। तो प्रभु दा ये नियम परमात्मा ने खुला छोड़ देता है मनुख ने। मनुख चौराहे ते खड़ा है, अगर अग्गे चला गया तो परमात्मा बनेगा, पछड़ गया तो ये पशु बनेगा। शरीर दा अंत होया ते अजे जन्म नहीं होया, सज्जे चला गया ते देव बनेगा, एक पवित्र रूह भटकदी रहेगी। खब्बे गया तो एक मलीन रूह है, इन भूत प्रेत कहते हैं, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। सुखमनी साहब, 6 अरब दे करीब इस वक्त जमीन दे उते मनुख ने, तो इतनिया ते रूहां समझ लेनिया चाहिए ब्रह्मंड दे च हैं। चंगियां नू देव कहते ने, माड़ियां नू भूत प्रेत कहते ने। और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी इसका जिक्र कर दें, कहूं जच गंधर्व ओ रग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिसाच, कहूं प्रेत पिसाच, भूत प्रेत पिसाच। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। सूक्ष्म शरीर
जद

0: नानक कहूं नसि जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछे पावे,
0: एक वस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिरले,
0: दो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से ना ही जारा,
0: ठाको की जय सद नमस्कार,
1: जाते मन लगा प्रमीठा,
0: सर्व सुखता हूँ मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सुख नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: आत पीत बरते अनत उलास,
1: अपनी ईमान कश बहो शाह होले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही गोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते सागर रख है,
0: की आज्ञा मन है मथ,
1: उसके चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक भांत माया के हित,
0: सरपर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया से रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दिसे सो चालन हार,
0: लपट रहो ते अंधे अंधार,
1: घटाऊ से जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
0: मिथ्या होमे ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या रथ सी असु वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता,
1: मिथ्या ध्रो मोह अभिमान,
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान,
1: सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीव हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है,
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रिया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत विकारा,
1: बेभूते मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: वृत्ति साध की आरजा,
0: साच बिना कह होत सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुखे आवतता कह दुर्गंध,
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाए,
0: एक बिना ज्यों खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपन के निरार्थ दाम,
1: धन धन तेजन दे कट बस्यो हर नाऊ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखो गंड लावत,
1: जानन हार प्रभु प्रवीण,
0: बाहर पीक न काहू भीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन मैं मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता,
0: नानक उन जन चरण पराता,
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन,
1: आप आप आप करत नबेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
1: पाप से अनप सकल ते रहत,
0: सब कुछ जाने आत्म की राहत,
1: जिस भावे तिस लए लड़ लाए,
0: शांत नंतर रहा समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जपना।

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सिमर हो गोबिंद
1: मन तरकी उतर चिंद
0: अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करो
1: सात संग अग्न सागर तरह
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: सात संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सेवर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: सुनत कमाप्त होत उदहार
1: आप त्रैलोक निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजय
1: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
0: रखे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिन कह साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आये
1: कर कृपा प्रभु आप मलाये
0: मिट गए बैर भय सबरीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आज जाल विकार रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभारी
1: नानक नवही खेप हमारी
0: प्रभ की उस्त करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सोत निधान
0: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब से ऊंच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रित नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ए पल तिस जन के मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: एहो निधान जपै मन कोए
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सगल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत के मन विश्राम
0: ओट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
1: जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवार
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊंच ता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी
0: सबते ऊंच ता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी
0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
2: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
3: दुनिया दे सब तो वड्डी अकल चाहिदी है प्रभु नु समझण लई गुरु नु समझण लई इस चक्कर च ना पैना मंदिर विच भीड़ है गुरुद्वारे विच भीड़ है मस्जिदां विच भीड़ है बड़ा धार्मिक जगत है गुस्ताखी माफ धार्मिक जगत है धर्म दी समझ रखे बिना धर्म दे बोध तो बिना धार्मिक इकट्ठ धर्म दी समझ तो बिना धार्मिक इकट्ठ समझ तो बिना बोध तो बिना है धार्मिक इकट्ठ धर्म दी समझ कोई नहीं जैसे कोई समाजिक इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ही ना होवे मां है पिता है ये चाचा है ताया है पुत्र है भैन है भरा है ये मामे ने मासियां ने इसकी समझ ही ना होवे बहुत वड्डा समाज दा इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ना होवे ओ इकट्ठ सारे दा सारा बेमैने बड़ा भारी धार्मिक इकट्ठ होवे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च धर्म दी समझ ना होवे धर्म दा बोध ना होवे और ए गल कबूल कर लेनी चाहिए जमीन देते जितने धार्मिक मंदिर ने इतने भी धार्मिक मनुख नहीं ने नहीं ने जितनिया मस्जिदां ने जितने मंदिर ने जितने गुरुद्वारे ने जितने जैन मंदिर ने जितने बौद्ध मठ ने जितने सनातन मंदिर ने जितने चर्च ने जितने सिनेमा हॉल ने

अन सत चित आनंद आनंद स्वरूप है। यही कारण है कि मनुख की चेतना शक्ति तो प्रभावित है, मनुख ताकत तो प्रभावित है। मैं सवेरे इस विचार नु सामने रखिया सी, जिथे ताण हुंदा है उत्थे माण हुंदा है। इस वास्ते हर मनुख ताण की तलाश च है, शक्ति की तलाश च है। ते दूर क्यों जाओ, परमात्मा एक शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दिया है। ऐसी शक्ति जो रंग रूप तो न्यारी है, सारा आकार उस तो आया है जिदा कोई आकार नहीं, सारा रूप उस तो आउंदा है जिदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिदा कोई रंग नहीं। चलो मैं अद्धा मिनट इस ते भी ले लवा। एक फुल खिड़िया है, रंग लेके, रूप लेके, सुगंध लेके, आकार लेके, ध्यान बख्शना। सहजे सहजे फुल मुरझा गया, रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे चला गया? रंग उथे चला गया जिदा कोई रंग नहीं। फिर बहुत सुक गया फुल दा, रूप भी खो गया। ए रूप किथे चला गया? ए रूप उथे चला गया जिदा कोई रूप नहीं। एक दिन फुल दा आकार भी खो गया। आकार किथे चला गया? आकार उथे चला गया जिदा कोई आकार नहीं। उन्होंने निराकार कह, निरंकार, आकार तो रहत, कोई आकार नहीं। सारा आकार उस तो आउंदा है जिदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उसे तो आउंदे ने जिदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उसे तो आउंदे ने जिदा कोई रंग नहीं। वो एक शक्ति है, उस शक्ति नू अनेका नाम दिते गए ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। किसी ने गोपाल किया, किसी ने गोविंद किया, किसी ने राम किया, किसी ने करतार किया, किसी ने मधुसूदन किया, गोरख किया, वाहेगुरु किया, सतनाम किया, अल्लाह किया, खुदा किया। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। गुरु नानक कहंदे ने, मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने। जैसे सूरज दा कोई एक नाम ते नहीं है, सूरज नू सन कहंदे ने, सूरज नू भान कहंदे ने, सूरज नू रवि कहंदे ने, सूरज नू सूरज कहंदे ने, सूरज नू खुर्शीद कहंदे ने, सूरज नू आफताब कहंदे ने, कोई एक नाम है। दुनिया दीआं सैकड़े भाषावां दे सूरज दे अलग अलग नाम ने। सूरज दे अलग अलग नाम ने, कोई झगड़ा नहीं। परमात्मा दे अलग अलग नाम ने, बड़ी झगड़े ने, कल कलेश है, बड़ी दुविधा है। नामां ते झगड़ा है, सूरज दे नामां ते झगड़ा नहीं, और सूरज दा एक नाम भी नहीं है। सूरज नूं संस्कृत दे भान कहिंदे ने, संस्कृत दे रवि कहिंदे ने, दो नाम ने, रवि ए भान है, ए रवि है, ए सूरज है, ए आफताब है, ए खुर्शीद है, ए सन है। कबूल है, ठीक है। जिड़ा सन है ओही आफताब है, जो आफताब है ओही खुर्शीद है, जिड़ा खुर्शीद है ओही सूरज है, जिड़ा सूरज है ओही भान है, जिड़ा भान है ओही रवि है। सानू कबूल है, पर जिड़ा खुदा है ओही राम है, जिड़ा राम है ओही अल्लाह है, जिड़ा अल्लाह है ओही गोविंद है। इसते बड़े झगड़े ने, इसते बड़ा कलेश है, इसते बड़ा अनर्थ है। इस वास्ते पता है धार्मिक सियाने पुरुष की कहंदे ने, जितनी अज्ञानता धर्म दी दुनिया दे च है, इतनी अज्ञानता समाज दे च, अर्थव्यवस्था दे च, और राजनीति दे च नहीं है, जितना अज्ञान धर्म दी दुनिया च। समाज दे संबंधां दे च, अर्थव्यवस्था दे च, राजनीति दे च इतनी मूर्ता नहीं है, जितनी मूर्ता धर्म दी दुनिया च। दसों गुरु साहिबान ने सानू ज्ञान दा पुजारी बनाया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ज्ञान दे स्वरूप ने।

ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੌਸਵ ਤਿੰਘ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ। ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਯਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ? ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭੀੜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਚ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੀੜ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੌੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਧਨ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਲੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਚ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਹੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਅਤਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਅਤਿ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ, ਕੋਈ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦਰ ਘਰ ਕੀ ਸੋਜੀ ਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਰ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਰ ਦੇ ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਫਿਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
नानक सोदे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुरु नाई भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे कोई भेद नहीं। दर घर नू लगे होया, घर दर दे नाल जुड़े होया, प्रभु गुरु दे नाल जुड़े होया, गुरु प्रभु दे नाल जुड़े होया, इंज दर घर दे नाल जुड़े होया, घर दर दे नाल जुड़े होया। सो दर के हा, सो घर के हा। इस दर तक साड़ा तन जाएगा कतई नहीं, कतई नहीं, तन जा ही नहीं सकता। निराकार दे देश ए आकार तन नहीं जा सकता। निरंकार दा देश जेदा कोई आकार नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, ए तन नहीं जा सकता। तन ते इत्थे रह जाएगा। निरंकार दे देश साडा मन जा सकता, साडा मन जा सकता। कारण ये मन आया भी सीधा सीधे रूप दे निरंकार तो आया। इस वास्ते गुरबाणी कहती है तन ते मिट्टी, ये मिट्टी इत्थे रह जाएगी। मन जोत है, ये जोत दे जोत हो सकता है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछा। मन सूक्ष्म शरीर है, इनरल बॉडी है। शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर। कई पुरुष इस ढंग नाल भी जींदे ने और इतनी उच्ची जिंदगी बतीत करते ने। वक्ती तौर ते सूक्ष्म शरीर का संबंध अस्थूल शरीर नाल तोड़ भी देंदे ने, कुछ दिनां लई, कुछ घंटियां लई, कुछ समय लई। सनातन जगदे महान जगत गुरु शंकराचार्य एक महीने अपने शरीर चो निकल गए। इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर जिन्हों जोत कहिंदे ने, मन कहिंदे ने, कढ़ दिता। चेलियां नूं कहा इस शरीर की रक्षा करने, मैं एक महीने बाद आवांगा। पिछोकड़ सारी गाथा ना सुनावा। ये राम राय भी कर लेंदे सन, धन गुरु हर राय साहब जी दे साहिबजादे। अपनी पत्नी नूं कहा मैं 7 दिन बाद आवांगा, मैं होर मंडलां दे जाना है। मेरी देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें। राम राय मसंदा नूं मौका मिल गया, राम राय दी देही नूं अग ला देईए ते आपां खुद गुरु बणीए। ए विचकार रोड है, इनू हटाओ। अर्थी सजा ली, अर्थी कढ़न लगे। राम राय दी पत्नी जारो जार रोंदी है, दुष्टो एक हफ्ता तो उड़ीक करो, अज ते 3 दिन हुए ने। मैनू कह गए ने 7 दिनां बाद मैं आवांगा, उड़ीक करो। नहीं, ये मर गए ने, ये मर गए। बड़े उसने तरले पाए, बड़े उसने रुदन कीता। मसंदा दी ताकत, लै गए शमशान घाट, अग ला दिती। अद्धा शरीर जल गया, राम राय दा सूक्ष्म शरीर आया। पर पिंजरा जल चुकिया सी, घर जल चुकिया सी, घर रहण दे लायक नहीं रहा सी। फिर भी उस सूक्ष्म शरीर ने अस्थूल शरीर दे प्रवेश करने दी पूरी कोशिश की थी। अग उस सूक्ष्म शरीर नो नहीं साड़दे, पानी नहीं डोबदा। उस शरीर दे प्रवेश करके राम राय उच्ची आवाज दे बोले, दुष्टो मसंदो, तुसी मैनू जिंदा साड़िया, गुरु थानू जिंदा साड़ेगा। तुसी मैनू जिंदा जला दिता है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां सारिआं ही मसंदा नू देहरादून दे जिंदा जलाया गया। इस तरह दी अनेकां घटनावां ने। आपां जितने बैठे ने
इतने सत्संग देच सूक्ष्म शरीर होणगे, इतने होणगे। किड़े सूक्ष्म शरीर? प्रथम ते ओ सिद्ध पुरुष जो इस अस्थूल देही देच किधरे भी होन ते किसे सत्संग नो मन भावदा ओ देख लेन दूरों ते शरीर नाल पहुंचना बड़ा औखा होवे, सूक्ष्म शरीर कर लें देन पहुंच जा। प्रथम। दूसरा, जिन्हां दी मौत हो गई, शरीर दी मौत हो गई, इहदी मौत ढेरी हो जांदा है, मिट्टी हो जांदा है, सूक्ष्म शरीर ना जलाया जांदा है ना ढेरी होंदा है। आम हालात विच शरीर दी मृत्यु तो बाद सूक्ष्म शरीर 13 दिनां दे अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जांदा है। हर वक्त मौत हो रही है, हर वक्त गर्भ विच प्रवेश करन दी सहूलियत संसार विच मौजूद है। 13 दिनां दे अंदर अंदर इस सूक्ष्म देही किधरे ना किधरे प्रवेश कर जांदी है। जो आम साधारण लोग ने, साधारण किसनों कहोगे, सच भी बोलते रहे, झूठ भी बोलते रहे, पुण भी करते रहे, पाप भी करते रहे, सत्संग भी करते रहे, कुसंगत भी करते रहे, चल के गुरबाणी की कथा भी सुनिए, गुरबाणी का पाठ भी करिए, गंदे गीत भी अलापीए, कदम अगे चलते रहे, कलम पिछे चलते रहे, ना अगे गए ना पिछे गए, उथे दे उथे इन्हां नूं साधारण कहिंदे। ये 13 दिनां दे अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जांदे। जिहड़े असाधारण, साधारण नहीं ने, असाधारण। असाधारण कौन? बड़ा भजन कीता है, बड़ा नाम जपे, बड़ी सेवा कीती है, बड़ी बंदगी कीती है, लेकिन मोक्ष गति तक नहीं पहुंच सके, दर तक नहीं पहुंच सके, घर तक नहीं पहुंच सके, रास्ते च ही रह गए। दर दी समझ नहीं सी, समझ सी, घर दी समझ नहीं सी, समझ सी, फिर क्यों नहीं पहुंचे? वाट लंबी है, पेंडा बिखड़ा है। तुसी आखोगे ओ रस्ता केड़ा है, ओ पेंडा केड़ा है, हुण मैं अर्ज करा ओ चलण दे नाल ही रस्ता बनदा, उंज कोई नहीं, उंज कोई नहीं। दो पंक्तियां मैं थानू सरवण करावां। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरमुख खोज अलक है ज्यों आकाशे पंख उडंदा, मच्छी जैसे पानी विच चलदी है ओदे चलण नाल रस्ता बनदा, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता चलती है तो रस्ता बनता, उंज नहीं है। पंछी आकाश दे जद उड़दा है, उड़दे ही मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं है। गुरुमुख अभ्यासी जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, जपण नाल रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं है, कोई रस्ता जपदे ही रस्ता बने। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, मच्छी चल पई रस्ता बनदा गया। इन्हें जप आरंभ कर दिता है अमृत वेले, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कि जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनेगा ले व्यर्थ नहीं जाएगी, रस्ता बनेगा। ये गल वखरी है कि जीवन रस्ते च ही रह जाए या घर पहुंचे। जिड़े चलते पै पर रस्ते च ही रह गए, घर तक ना पहुंचे, इन्हां नूं असाधारण कहिंदे ने। ये साधारण लोग नहीं ने, असाधारण ने। ये सूक्ष्म देही बहुत जल्द जन्म नहीं लैंदी, ये सूक्ष्म शरीर बहुत छेती गर्भ विच प्रवेश नहीं करदा। क्यों? जितनी वाट इसने तय की थी ये चल चल के, इतने ही संस्कारां वाली कोई मां होवे तां गर्भ विच प्रवेश करनगे, वरना नहीं। इस तरह दी कोई मां होवे जिहड़े उन्हां कोल संस्कार ने, चल चल के जो उन्हां नूं अनुभव मिले है,
दूसरे असाधारण कौन?

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उचारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै करदे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पट कीर्त साहब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा नानक नाम निरंजन जानियो, तन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती तन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती की। आरंभता है प्रेमा भगती तो। तन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं की। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया किरपा भरिया बचन कहा,

एक ओंकार सपनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अवतारी पुरुषानु सुते सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिन्हों तखल्लुस कहते ने, कोई खासियत देख के कोई अहमियत देख के उन्हानु नाम दिता जाता है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बजी हुई देख के जगत दे मुंह निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है तमाशा है, जन्म नफा भी खेल नुकसान भी खेल जवानी भी खेल बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया जानिया और जीविया देशवासियों ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस कीता अनुभव कीता जगत दुख है जगत रोग है जगत मिथे है जगत ते बगदे हुए हंजू ने जगत ते एक पीड़ा है एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहन लगा जगत एक पीड़ा है एक दुख है एक रोग है और उस रोग दा समाधान लेके उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नु स्वस्थ करदा रहा समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां दा बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया है जो रोगियां लई वैद है इस दे कुल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नु समझना होवेगा जगत एक पीड़ा है तो जगत तो मुराद की लिए मनुख मनुख स्वयं एक पीड़ा है मनुख ही समस्या है। ये नहीं कि मनुख दिया समस्यावां ने नहीं मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दिया वेदनावां ने मनुख दे दुख ने ऐसा नहीं मनुख खुद ही एक दुख है मनुख खुद ही एक पीड़ा है मनुख खुद ही एक वेदना। जद मनुख है तो पीड़ा है मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इस दी शुरुआत इंज कर देने जन्म दुख है जीवन दुख है मरण दुख है। सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देंदा जन्म भी पीड़ा है जीवन भी पीड़ा है मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखा नु जन्म सुख है जीवन सुख है सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्म दिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है मौत पीड़ा है इसनु भुलाना है मौत वेदना है इसनु गलत करना है। मौत ही दुख है ए चेते ना आवे। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए जीवदे जागदे मनुख दिखाई देन कब्रिस्तान ना दिखाई देन हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन जल्दियों या लाशां ना दिखाई देन।
और घर विच कोई मृत्यु हो गई है तो कोशिश की जाती है सारियां दे अंतिशकरण विच मौत बैठ जाए उस तो पहले इस नूं घरों कढ़ो, इस तो पहलो कढ़ो, जला के खाक कर दो। जीवन चेते रहे, जन्म चेते रहे, मरण भुलाओ भुलाओ। ये पहला अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते आया जिसने मनुखता दे सामने बुलंद वांग होके कहा, जन्म दुख है। शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्मदिन मना रहे हो और दुख दे जन्म दी खुशियां मनांदे हो, यहीं नच रहे हो, टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख नु दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनु ये समझ आ जांदी, जन्म दुख है, जन्म दुख है। जन्म दा बोध नहीं है इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है, दुख दा बोध नहीं है इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं। और धार्मिक दार्शनिक

ना गर्मी महसूस होती है। पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल बहुते दिमाग मनुखां दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर ने। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नु क्या कहिए, इस दिमाग नु क्या आखिए, इते पत्थर है। जो मेरी समझ देश नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दिखते नहीं है, क्योंकि मैनू उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज दी मैनू समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया च। अगर परमात्मा भी मेरी समझ देश नहीं है, तो कम से कम मेरी दुनिया दिच परमात्मा नहीं है, भावे होवे भावे जगत दिच है, पर मेरी दुनिया दिच नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुती मनुखता तो बिना जी रही है, और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लईए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदिया होया परमात्मा तो बिना जी रही है, जैसे अंधा सूरज दे होंदिया होया सूरज तो बिना जीवंदा। रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल डुल के पै रहा है, पर अंधा इतने प्रकाश ते होंदिया होया प्रकाश तो बिना जी रहा है, परमात्मा दे होंदिया होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए, समझ दी दुनिया आरंभ हो गई, समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे है। केड़ी समझ, जो मेरी समझ देश नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ देश नहीं, जो मेरे बोध देश नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहिंदे ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होंदी है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होंदी है। ये भी ठीक है कि अंधे नू अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, जो जन्म तो अंधा है उनू अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अंधेरे नू देखण वास्ते भी ते अखां दिच रोशनी चाहिदी है, अखां दिच नूर चाहिदा है। बहुती दुनिया मूर्खता दिच जीवदी है पर मूर्खता दिखाई नहीं देंदी, बहुती दुनिया गलतियां दिच जीवदी है गलतियां महसूस नहीं होंदियां, बहुती दुनिया पाप दिच जीवदी है पाप पाप नहीं दिखाई देंदा, जैसे जन्म तो जो अंधा है उनू अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, पापियां नू पाप दा कोई बोध नहीं, मूर्खां नू मूर्खता दी कोई समझ नहीं। गलतियां बार बार जो हो रही ने, गलती गलती नहीं दिखाई दे रही, ये इस तरह जैसे जन्म दे अंधे नू अंधेरा नहीं दिखाई देंदा। अगर गलती महसूस होने लग पई है, भूल दिखाई देने लग पई है, मूर्खता महसूस होने लग पई है, तो धार्मिक अनुभवी पुरुष कहिंदे ने हुण इस नू मूर्ख नहीं कहना चाहिदा, हुण इस नू अंधा नहीं कहना चाहिदा, क्यों इस नू अंधेरा ते दिखाई देने लग पया, वरना अंधे नू ते अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा। हुण इस नू मूर्ख नहीं कहना चाहिदा, क्योंकि इस नू मूर्खता गलतियां भटकन पाप दिखाई देने लग पैण। पाप दिखाई दिस दिन देंदे ने पुन दी तड़प उसे दिन पैदा होंदी है, गलती दिखाई जिस दिन देंदी है सुधार दी तड़प उसे पीड़ा कल कलेश जिस दिन दिखाई देंदा है, परमात्मा दी प्यास उसे दिन पैदा होंदी है, उस तो पहला होंदी नहीं, किसी कीमत ते नहीं होंदी। इस वास्ते देखदे हां अनंत अवतारी पुरुष आए ने समझान लिए सकया, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आज

0: बाद में अब तक भटकता है। ये ठीक है कि ऐसे जमांदरू अंधे बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, जिन्हानू अंधेरा भी ना दिखाई देंदा हो, बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, ऐसे अंधे जिन्हानू अंधेरा ना दिखाई दिखाई देंदी होवे, पर ऐसे अंधेयां नाल संसार भरिया पे जिन्हानू अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, अपने कीते हुए गुनाह नहीं दिखाई देंदे, भुल्लां नहीं दिखाई देंदियां, सवेरे तो शाम तक भुल्लां दिस जीवना, रात दी आरंभता तो समाप्ति तक गलतियां दिस जीवना, सवेरे उठदियां सार जागना, गलतियां दिस जागना, गलतियां दिस जीवना, और रात नूं सौण लग्या इंज कह लो भुल्लां दिच सौणा, नींद भी भुल दिच, जागृति भी भुल दिच, ऐसे मनुख दा सौणा ते जागणा व्यर्थ भटकणा, ऐसे मनुख दी नींद दिच सुपने भी ऐसे भयंकर आवणगे कि इह सुत्ता होया भी तड़पदा रहेगा, बेचैन ते व्याकुल रहेगा जैसे कि दिन दे समय। शिख सादी साहब कहा करदे सन, मूर्ख मनुख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना। क्यों? बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, और ते कुछ प्रगट करन दा वसीला है नहीं, देखदे आ मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, सुन की रहे है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, चल केड़े पासे रहे है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, मूर्खता प्रगट होंदी है बोल के। मूर्ख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना, पर जे किधरे के चुप रहना मेरा गुण है, समझ लो मूर्खता उसकी समाप्त हो गई, मूर्खता उसकी खत्म हो गई, उन्हों को झलक मिल गई। सतसंग दा यही लाभ है, सतपुरशां दी सोबत दा यही पाठ पठन दा यही लाभ है, किसे दिन मनुख नूं अपनी मूर्खता दिखाई दे जाए, ई जिहड़ी आम कथा कहानियां सत्संग दिच गल कीती जा रही है, परमात्मा दिखाई दे जाए, परमात्मा दिखाई दे जाए, नहीं ते नंबर दो ते नंबर तीन ते गल है, पहली गल ते ये है अंधेरा दिखाई दे जाए, मूर्खता दिखाई दे जाए, परमात्मा दे अखरी अर्थ ने प्रकाश, पर जिसनू अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा उन्हों प्रकाश कित्थे दिखाई दे रहा। दूसरा, अंधेरे विच चलना चलना नहीं होंदा, भटकना होंदा है, रस्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं चल रहा, ठीक है मैं चल रहा, कना भटकना, ना मंजिल दिखाई देंदी है ना रस्ता दिखाई दे रहा, सारी जिंदगी मनुख दी कृत विच बतीत होंदी है, ना कृत दिखाई देंदी है ना कृत दा अंजाम दिखाई देंदा, ना कर्म दिखाई देंदा है ना कर्म दी आखरत दिखाई देंदी है, तो इनू करना कहोगे नहीं ये तो भटकना है, इनू चलना आखोगे ये तो भटकना है। हजार अंधे दूसरी समत विच आ रहे हैं, टकरा ही जानगे, जगत टकराव है, कौमा टकरा रही हैं, देश टकरा रहे हैं, परिवार टकरा रहे ने, व्यक्ति टकरा रहे ने, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है। भगत शर्म ने मन रे संसार अंध गएरा, समस्त संसार अंधेरे दिच जी रहे, अंधकार दिच जी रहे, मूर्खता दिच जी रहे, अचेतपणे दिच जी रहे, इस वास्ते इसका सारे का सारा करना गलत है, अंधे का चलना भटकना है, मूर्ख का पूजा पाठ भी व्यर्थ है, मूर्खता दिच कीता होया दान ओ भी व्यर्थ है, मूर्ख दे हर कर्म दे चौं हंकार दी बू आवेगी, निरंकार दी सुगंध नहीं, मूर्ख दी हर कृत दे चौं बिल्कुल बदबू ही होवेगी, वासना दी प्रार्थना दी सुगंध नहीं होवेगी, प्रार्थना दी महक नहीं होवेगी। इस वास्ते मेरे देखे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਮੌਰ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਗਿਆਨ, ਉਹ ਹੈ ਮੂੜਤਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ੂ, ਜੈਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਨਾਮ ਵਿਬੋਧ ਲਗਾਓ। ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ ਪਚਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਜਲ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਦੀਵੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਲਦੇ ਰਹਿ, ਵੰਡਦੇ ਰਹਿ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50, ਜਲਦੇ 50 ਦੀਵੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਬਦਲੀਏ, ਉਸਤਾਦ ਬਦਲੀਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਏ, ਇਤਨੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਾ ਜਲੀ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਕੇ, ਮਹਾਂ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ। जरदरस्त आए, ईसा आए, मुहम्मद आए, मूसा आए, एक कहण दे कोई संकोच नहीं। अरब सारा अज भी अंधेरे च, मध्य पूरज अज भी सारा अंधेरे च, अवतारा दी धरती कैलाण वाली ए हिंदुस्तान ए भारत अगले लाउत्से जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन दी धरती ने पैदा कीते ने, समस्त चीन अज भी अंधेरे च, अज भी अंधेरे च। सूफिया नू जन्म देने वाली ईरान दी धरती, शेख सादी, हाफिज, मौलाना रूम, शमस तवरेज, और इसे तरीके दे नाल हाफिज उमर खयाम, एक तो एक महान दीवा जलिया उस धरती दे च, ईरान अज भी प्रबल अंधकार दे च भटक रहे। हजारां चिराग बेकार हो जाणगे उन्हां मनुखां दे सामने जो अंधे ने, अंधे ने, अंधे ने। ई अंधा पण केड़ी गल दा है, क्या प्रकृति अंधिया नू जन्म देंदी है? नहीं, किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा सी देख सकदे हां जो जन्म तो अंधा होवे। प्रकृति ते सुजाकियां नू पैदा कर दी है, प्रकृति ते दोष आयद नहीं कर सकदे, परमात्मा ते ज्ञानियां नू पैदा करदा है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान गौ दे बछड़े ने जन्म लिया, थोड़ी देर बाद उठदा है और गौ दे अस्तना दी तरफ जो है लपकदा है। इसनु ज्ञान किसने दे दिता? तेरी खुराक इना अस्तना दे च, तेरा रिजक अस्तना दे च पे है, ते फिर इसनु चुंगण दा बोध किसने दे दिता? ये ते सब प्रकृति दे रही है। रिजक दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है, राजक रहीम दी तलाश दा बोध भी राजक रहीम दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। सबनु ज्ञान दे रहा है, सबनु सूझ दे रहा है। पर ए अंधापन क्यों है? एक ते ओ अंधा है जिसनु कह दईए जिदी अखां विच रोशनी है ही नहीं, एक ओ अंधा है जो अखां खोले ही ना, अखां खोले ही ना। बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं, खोलदे ही नहीं, और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठते ने, ताब गवा बैठते ने, और फिर जीवन इस तरह जीवदे ने बकौले धन गुरु अर्जन देव जी जैसे उल्लू। सूरज चढ़िया होया है, चानना है, पर उल्लू दी दुनिया ते अंधेरा है। जे उल्लू दी दुनिया विच अंधेरा है ते उस मनुख नू की आखांगे जिस दे जीवन विच अंधेरा ही अंधेरा है? कैसा ते नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या तो कहण दे कोई संकोच नहीं, उल्लू अंधेरे दिच जी रहा है, अंधेरे दिच जी रहा है। बहुती मनुखता अंधकार दिच जी रही है, क्योंकि अंधकार दिच जी रही है तो इनू उल्लू कहण दिच की संकोच है। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी दिच उल्लू नू गुगू कहिंदे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत गुगना। कोई परमात्मा दी समझ नहीं, अंधेरा ही जिंदगी बन गई है, अंधेरा ही आनंद बन गया, अंधेरा ही सुख बन गया। कितना तरस आएगा उस मनुख दी जिंदगी ते, भटकना ही जिसदी जिंदगी बन जाए, भटकना ही जिसदी चाल बन जाए, टकराव ही जिसदा जीवन दा आधार बन जाए, ते कल कलेश जिदी जिंदगी दा लक्ष्य बन जाए। कितना तरस आएगा, कितनी दया आएगी। इस दया नू हिरदे विच धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान दी धरती तो चल पेने, औषधियां नाल भरिया होया झोला लेके, अपने हिरदे विच तरह तरह दी औषधि रख के, जगत एक रोग है मनुख एक खुद समस्या है ते सारियां समस्यावां दा समाधान लेके नौ खंड पृथ्वी दे भरमण लई चल पए ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होई मनुखता दी जबान चो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
3: Punjabiyan da ikko ik Harman Pyara grocery store Fruity Kehna, jinna de prices wholesale nalon vi ghat han. Fruity Kehna di navi location South Sari vich khul gayi hai, 2990152 Street. Is hafte de special han 17 July ton 22 July tak. Large size BC cherries 299 pound, 4 kilo Rajan Hidden Mangoes 1699 da box, ate 10 pound Snow Boy Russet Potatoes 349 da bag.
4: फैमिली केयर फार्मेसी
5: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
4: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
5: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
4: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
5: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
6: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
4: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
7: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
8: Radio station 1550 AM Gurbani segment tuhade tak Swargvasi Sardar Ajit Singh di baad Swargvasi Mata Surinder Kaur Baad di yaad de vich 1550 AM ton Gurbani prachar kita janda hai 1550 radio de utte Gurbani de kise bhi program nu sponsor karan vaste 604-900-7790 604-961-7790 1550 AM Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ 399 ਦਾ ਬੈਗ, ਵੱਡਾ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 298 ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ 499 ਨੂੰ ਈਚ।
9: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ 604-325-8370 604-325-8370
8: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103 8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।